0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुडोका 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।

0: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So India took the first set 25-22, followed by a 25-19 win in the second, before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool matches against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our unbeaten start.
1: स्क्वैश की बात कर लेते हैं. जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था. महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. निर्णायक मुकाबले में अनुभवी ज्योत्सना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था. ऐसे में ज्योत्सना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी. उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई.
0: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place in the quarterfinals of the men's shortboard event. Kishore was in action in the round of 16 against China and produced a strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition, with the quarterfinal stage still to come.
1: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी. देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो टीम इवेंट था उसमें पदक से चूक गई. महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के टीम इवेंट में भारत पांचवें स्थान पर रहा और पदक से चूक गया. व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ आठवें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येन चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा. मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी. वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही. राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया. अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी.
0: That's how we also talk about some news that we have from women's sepak takraw, where India have gone down to Japan in their latest Group B encounter. So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match. The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan. But that's not all we have right now. There is some very interesting action coming to you from archery as well, where in the men's compound individual event, Ganesh Maniratnam has booked his place in the quarterfinals, defeating fellow Indian archer Sahil Jadhav in a thrilling pre-quarterfinal encounter. It was a very close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the all-Indian battle by just 1 point. Now we also look ahead, because there is more action coming in from the women's compound individual event, with Pritika, Chikita and Jyoti Surekha set to begin their round of 32 and round of 16 matches at 9:45.
1: दिन की जब शुरुआत होती हो रही है तो भारतीय जो टीम भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते उसके बारे में बता देते हैं. भारत ने अब तक 37 पदक जीत लिए एशियन गेम्स में, जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर, 17 कांस्य समेत कुल 37 पदक हैं. अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है हम जरूर आपको बताएंगे ठीक 10:30 पर. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 के अपडेट सुन रहे थे.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं
5: நேயர்கள் இதுவரை ஜப்பான்

0: क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। खैर बात करते हैं यहां पर स्क्वैश की, जहां पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी। जी हां, पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूरज चंद्रवीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीतकर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है। पहले मुकाबले में सूरज चंद्र ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद वीर चोटरानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा। उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी। और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोउ को, जो उनके खिलाफ जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वेलन ने यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी। इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल ए में अपने अभियान को और मजबूती दी।
1: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event, where India had two strong contenders in action today and Chikita Thanipathy has saved. So we begin the round of 32 while talking about Jyoti Surekha Venam, who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16. But the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Thanipathy, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
0: बात शूटिंग की करते हैं। शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत की मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है। वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है। वहीं काइनन चेन्नई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर, यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है।
1: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Balara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo Min.
0: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी, फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: You are listening to the Asian Games 2026 update, and it is so heartening to see India doing well. We do hope that you're all cheering for Team India in whichever way possible. All right, now getting back to programming. Thank you so much to everybody who's sending in messages. Hello, good morning to everybody.
4: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்பொழுதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: நேயர்கள், இதுவரை வளமான பாரதம் நிகழ்ச்சியில் VVG ராம்ஜி, விக்சித் பாரத் ரோஸ்கர் மற்றும் அஜீவிகா மிஷன், மத்திய அரசின் கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதி திட்டம் குறித்த சித்திரத்தின் முதற் பகுதியினை கேட்டீர்கள். அமைப்பு மயிலாடுதுறை த செந்தில்குமார், ஸ்ரீனிவாச முருகன் ஆகியோர். அமைப்பில் உதவி சி கலைச்செல்வி. இத்துடன் இன்றைய வளமான பாரதம் நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவு பெறுகிறது.
1: நேர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் கேட்கலாம் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை. டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
2: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
3: Welcome back to the Asian Games live update, where the nerves are high and the latest action has kept us right on the edge of our seats. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi, bringing you all the latest twists, turns and medal moments from Asian Games. And what a moment we have to begin with. India has struck silver in shooting, and it is Aisha Singh who has done it for us. What a spectacular contest this has been. Shoot off after shoot off, the pressure kept mounting, the margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
4: Bilkul Vidushi, batana chahunga, nafs ko bilkul dilon ki dhadkan ko rok dene wala muqabla tha. Asli shooting, zabardast शूटिंग देखने को मिली, और ईशा सिंह ने क्या अपने नफ्स पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगी, एक वक्त लग रहा था तीसरे पर आएंगी, और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जियू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था जो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूट आउट के बाद हराया। दूसरे शूट आउट में ईशा 3-2 से आगे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूट आउट में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
3: व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर।

0: taking the top position. Their race too is now underway as well. In the women's dinghy, Netra finished sixth in the opening qualification race with Singapore at the top, and once again race two is currently running. And finally in the mixed dinghy, Shraddha and Ravindra finished eighth in the race three of the opening series with Japan taking first place. Race four is now on, so we are still waiting for the latest positions from the Indian pair.
1: आज क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी. भारत बनाम अफगानिस्तान का एक मुकाबला होने वाला था जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. हालांकि भारत ने पिछला मुकाबला जापान से खेला था, आह और वाह का मुकाबला था. बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता था. आज उम्मीद की जा रही थी जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया मुकाबला. लेकिन अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की जो विजेता टीम होगी उससे सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह भी बता दूं भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंची, चूंकि वरीयता और रैंकिंग के आधार पर फैसला किया गया कि भारतीय टीम को आगे पहुंचाया गया और भारतीय टीम सेमीफाइनल उतरेगी. और हां, एक और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी है.
0: While we are giving you these updates, there are some action which is coming in live from the squash courts where the women's team match has started. The pool C match number 3 between India and Japan has started, which is after their victory on China by 2-1 earlier today. So the next update that we will be coming to you in an hour, we will come with the results of the squash match which is just starting right now. Until then, stay tuned to Akashvani. This is Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest updates from Asian Games. See you in an hour. Thank you very much.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: Well, you were listening to the Asian Games 2026 update, and now we're back with Play It Cool. And it would absolutely be incomplete if we don't talk about her, Taylor Swift, who has just added 4 new songs to The Life of a Showgirl, which is her new album. And one of them has people talking because it seems to be very much about her husband, Travis Kelce. The song is called Cleveland, and it is not a random name because that's where Travis Kelce grew up. So far, the lyrics video is out and it features a very adorable clip of the sweet couple on a car ride, probably towards Cleveland. And in the song, Taylor talks about how Travis doesn't care what the rest of the world thinks about her, and she calls him the love of her life. Well, Taylor Swift writing a song about her husband? Yes, it's very on brand, but it's full of love. So happy that she knows that she has found her person.
4: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்பொழுதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
5: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை நோற்று 2.8 இது வரலாற்றில் என்று நேரம் 12:36:40.
6: தங்கமான உறவுகளுக்காக பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை
7: ஆர்டிஎம் அக்ஷயா கோல்டன் பிளக்ஸி ஸ்கீமில் 11 மாத சேமிப்பு திட்டத்தின் முடிவில் அன்றன்றைய விலையின் அடிப்படையில் அல்லது மதிப்பின் அடிப்படையில் செய்கொலி செய்தாரம் இல்லாமல் நகை வாங்கலாம்.
6: தங்கம் சேரும் கைராசி பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை, நேரு வீதி, புதுச்சேரி.
4: வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சி நிறைவாக பாடல் கேட்கலாம். சின்னவர் திரைப்படத்திலிருந்து. நேரம் 12:37:11.

0: அப்டேட்ஸ் கா.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में. मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है विदुषी वत्स से. चलिए आज इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं, स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. ओमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है. भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है. पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8-11 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहां अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है. तीसरे मैच पर सभी की निगाहें, क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरुबकोवा को हराकर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं. आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद जबरदस्त चल रहा है. अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंच गया है.
3: Absolutely, the events today are promising that thrill. They are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with the packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now, after that, we go with boxing, where Priya taking on her quarterfinal in the women's 60 kilogram category. And at 4 p.m., it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sun in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that, we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the excitement still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abubakar listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000 meter final, where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4 in

0: Muslim affairs expert Raza Rizvi says that through this legislation, Prime Minister Narendra Modi has empowered women in Muslim community and helped in bringing them into the mainstream of society.
1: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा
0: द लॉ हैज गिवन देम ग्रेटर लीगल ऑप्शंस टू चैलेंज इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट देम एंड सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी न्यूज लखनऊ
2: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News. Welcome back to the Midday News. The nation is paying homage to revolutionary freedom fighter Bhagat Singh on his 119th birth anniversary today. It was on this day in 1907, Bhagat was born in village Banga. In

0: 36 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome back to your Asian Games live update, where the action is coming thick and fast, and India has already given us another reason to celebrate. I am Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi, bringing you all the latest results, medal moments and big developments from the Asian Games. And what a way to begin this update, where India has confirmed another medal in boxing. Priya has stormed into the semi-finals of the women's 60kg category, and with that semi-final berth, she has guaranteed herself a medal for India. Priya faced Tajikistan's Migona Samadova in her quarterfinal bout, and she delivered a commanding performance, winning the contest 5-0, a unanimous victory, a place in the last four, and most importantly, another medal is now assured for the Indian contingent. Her semi-final is scheduled for September 30, so there is still another big challenge ahead.
3: स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत कमाल कर रहा है। जापान के खिलाफ पहले बढ़त, फिर बराबरी, फिर आखिरी निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत। जी हां, भारत ने स्क्वैश कोर्ट पर दम दिखा दिया है। भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने पूल सी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। पहले मैच में जोशना चिनप्पा ने एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-11-8, 11-9 से शिकस्त दी, भारत को यहां 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह और सामोती वतानबे के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा, और जापान ने यहां पर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। अब फैसला तीसरे और निर्णायक मैच पर पहुंच गया था। यहां तन्वी खन्ना ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और अकारी मुद्रिकोवा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से शिकस्त देकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। भारत का अब पूल सी में अगला मुकाबला 29 सितंबर को ईरान से खेला जाएगा।
2: Absolutely a strong finish for the Indian women in Pool C. And now let's look at the Indian men, who are on court against the Republic of Korea with their Pool A match currently undergoing right now. So the first match has already been done, which was Vellavan Senthil Kumar, who has already given India the perfect kickstart that was needed. So he defeated Korea's Na Joo Young in straight games 11-6, 11-4, 11-7, which did put India 1-0 up in the team tie. And after that, it was a beautiful, beautiful dominating game by Abhay Singh, which has just ended. He has scored again a 3-on-3 straight victory. Amazing lead in all the games as 11-4, 11-7 and 11-1. Now in the next match, which is the third one, it's Veer Chotrani against Oh Seo-jin to finally settle us into this straight victory against South Korea. And of course, we will keep you updated as this contest develops.
3: Vidushi, chalte hain athletics ke track par, wahan mix 4x100 meter रिले के फाइनल में भारत पहुंच गया है, और पहुंचता क्यों नहीं। अनिमेश और हरित्रा ने जो पूरा दम लगाया, बिल्कुल हरिता भद्रा ने जो आखिर में दम लगाया, उससे भारत ने वहां पर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। एथलेटिक्स ट्रैक में भारत के लिए बड़ी खबर यकीनी तौर पर है। मिक्स 4x100 meter रिले की हीट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41.54 सेकंड का समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बना ली। भारत की शानदार दौड़ में अनिमेश कुजूर का तीसरा लेग बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फाइनल में भारत से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
2: And now a quick update coming in from hockey, that India's men was scheduled to take on Bangladesh in their Pool A encounter, but the match now has been rescheduled.
3: बिल्कुल, बात करते हैं महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले की, जहां भारत की सीमा पुनिया एक मर्तबा ऐसा था तीसरे पायदान पे चल रही थी, ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में थी, अब चौथे पायदान में पहुंच गई है। चीन की दो खिलाड़ी फेंग बी और जियांग पहले और दूसरे स्थान पर। फेंग बी 63.69 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि जियांग भी 62.25 मीटर का थ्रो लगाकर दूसरे स्थान पर। वहीं थाईलैंड की इंसाएंग 61.43 मीटर का थ्रो लगाकर तीसरे स्थान पर। वहीं सीमा पुनिया 59.88 मीटर के बाद तीसरे चौथे स्थान पर बनी हुई है। क्या होता है, क्या घटित होता है, अगले एक घंटे में हम अगले जो अपडेट हम लेके आएंगे 4:30 पर, उसमें बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद

0: back podium finishes and another fantastic moment in Vidya Ramraj's journey.
1: अब बात करते हैं एथलेटिक्स की, जहां से एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई। भारत की सीमा के ने महिला डिस्कस थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59.88 मीटर का थ्रो किया, लेकिन यह प्रदर्शन उन्हें पदक नहीं दिला सका। सीमा ने चौथा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गई। चीन की फेंग ने 63.69 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की ही जियांग ने 62.25 मीटर के साथ रजत पदक जीता। थाईलैंड की इनसियांग ने 61.43 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। सीमा के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि उनका यह शानदार प्रयास पदक नहीं दिला सका। सबसे अहम बात बताता हूं आपको, 1998 के बाद पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रो में कोई भी पदक नहीं जीत पाए, यानी 1998 से लगातार जीतते थे, ये पहली बार है जब भारतीय महिलाओं ने पदक डिस्कस थ्रो में नहीं जीता। सीमा ने पूरी कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें पदक नहीं मिला।
0: But right now, let's bring you a big update that is coming in from the boxing ring, where Kapil Pokharia has stormed into the semi-finals of the men's 90kg category, and what a performance it was. Kapil faced Korea's Gichae Kim in the quarterfinal, and this was clear domination from the Indian boxer. He controlled the bout from start to finish, leaving no doubt with the judges, and came through with a unanimous victory. A commanding performance, a clear result, and Kapil Pokharia is now through to the last four. With that semi-final berth, Kapil has also guaranteed a medal for India in the men's 90kg category. Another Indian boxer, another semi-final, another medal confirmed.
1: 400 meter hurdles ki baat karte hain, Bharat ke Santosh Kumar Tamilrasan ne पुरुषों के 400 मीटर हर्डल्स फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन किया। बिल्कुल अफसोसनाक प्रदर्शन था। संतोष ने 49.95 सेकंड का समय निकालते हुए 8 खिलाड़ियों में 7वां स्थान हासिल किया। पूरी रेस के दौरान संतोष पदक की दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कतर के बासिम हेमेदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.82 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
0: Let's also bring in some good news to balance it, that is from the Indian men on the squash courts, who has completed a 3-0 victory over the Republic of Korea in their Pool A encounter, with all three Indian players delivering straight games wins, starting from Velavan Senthil Kumar, then a clear domination by Abhay Singh, and then it was Veer Chautrani's turn to put the finishing touch on the contest, and he completely dominated, winning all three games. So there was absolutely no way back for Korea as India wrapped up the team tie 3-0.
1: हॉकी की बात करते हैं, भारत बनाम बांग्लादेश जबरदस्त मुकाबला। हालांकि भारत ने बढ़त बना ली है, पहले ही क्वार्टर में भारत ने अभिषेक लाकड़ा के गोल की मदद से बढ़त बनाई। हालांकि अभी 1-0 का स्कोर है भारत के पक्ष में। दूसरा क्वार्टर यहां पर जारी है, देखना यह होगा कि क्या यहां भारत कुछ और गोल करता है, दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भारत बांग्लादेश पर बढ़त बनाया हुआ है।
0: Now a tough result coming in from the athletics track, where Avinash Sable has finished fourth in the men's 3000 meter steeplechase final, narrowly missing out on a place on the podium. And these Asian Games, as he is into Asian Games as defending champion, having won gold in the previous edition, but this time there will be no medal for India in this one, which is clearly disappointing. But the heat is about to turn up in the athletics arena with three high powered finals coming for us, with Murli Sri Shankar and David in men's long jump final, with Gulveer and Yunus in the men's 1500 meters final, and the men's javelin throw with Rohit Yadav and Yashveer Singh coming for us.
1: जी बिल्कुल, अगले एक घंटे में क्या होगा अगली अपडेट में जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी ठीक 5:30 पर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की विशेष अपडेट में। घड़ी की सुई में ठीक 5:30 हुए हैं। बताते हैं इस घंटे की खास अपडेट। एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए एक और शानदार खबर आई है। पुरुषों की 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया।

0: गुलवीर ने 3:36.72 सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की। बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इज़ुजावा ने 3:36.35 से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 के साथ नवे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग बदल दिया है।
1: And now we have another athletics medal update live coming in from the women's 5000 meters final. Parul Chaudhary has done it again. She has won the bronze medal for India in the women's 5000 meters, adding another medal to what has been a remarkable athletics campaign for the country. She has already stand out among many performers from India in the women's 3000 meters steeplechase medal as well. And you know, there was plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again. Another medal from athletics.
0: Hockey की बात कर लेते हैं विदुषी। यहाँ पर भारत शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी है। अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है। यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है, उन्होंने कमाल किया है। 27, 40 और 45, ये मैं मिनट बता रहा हूँ, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया, लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था। युवराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था। उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया। शिनालन लाखला ने 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था। अभी इस वक्त भारत 8, बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.5 मिनट का समय बचा है।
1: We also have 2 athletics finals underway right now with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sreeshankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Paturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt, recording 7.70. The fourth one recording 7.45. Meanwhile, China's Shi Yang has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
0: बिल्कुल, रोहित यादव और यशवीर सिंह, इन दोनों खिलाड़ियों ने नीरज चोपड़ा की कमी महसूस अब तक नहीं होने दी। रमेश पथिराज पीछे चल रहे हैं। रोहित यादव पहले स्थान पर हैं, 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर। वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंककर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर ऊंट किस करवट बैठता है, अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேர்கள் இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சு செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: FM Rainbow 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்

0: நேற்று ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
2: வெல்கம் பேக் டு யுவர் ஏஷியன் கேம்ஸ் அப்டேட், வேர் தி இந்தியன் பிளாக் இஸ் பேக் ஆன் தி போடியம். ஐ அம் விதுஷி வத்ஸ் வித் முகமது ஷாஹித் ஆஸ்மி, அண்ட் வி ஹாவ் ஹியூஜ் அத்லெட்டிக்ஸ் அப்டேட் கமிங் இன் லைவ் ஃப்ரம் தி ஏஷியன் கேம்ஸ். இந்தியா ஹேஸ் வான் மோர் தென் 300 அத்லெட்டிக்ஸ் மெடல் அட் தி ஏஷியன் கேம்ஸ், அண்ட் இட் இஸ் முரளி ஸ்ரீசங்கர் ஹூ ஹஸ் கிரியேட்டட் திஸ் லேண்ட்மார்க் மோமெண்ட். ஸ்ரீசங்கர் வின்ஸ் சில்வர் இன் தி மென்ஸ் லாங் ஜம்ப், produced a best jump of 8.07 meters to finish with the silver medal, successfully defending the silver medal he won at the previous games. A two-time Commonwealth Games silver medalist once again delivers on this big stage. But this final also had a difficult moment for the Indian star. Ṣrīśaṅkar had to retire from the competition after suffering an injury during his fourth attempt. Still, that 8.07 meter effort that had already done the job, securing another Asian Games silver. But this is not all. The Indian performance from athletics does not pause here. There is more from medals at this moment that we are excited to share.
3: बिल्कुल, भारत को एक ही इवेंट में दोहरी सफलता मिली, दोहरी खुशी मिली है. मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया. यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया. वहीं रोहित यादव का आखिरी प्रयास फाउल जरूर गया, लेकिन उन्होंने 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में कर लिया. गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल रुमेश पथिराजा ने जीता. उन्होंने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का थ्रो करके जो शानदार उनका थ्रो था, स्वर्ण पदक दिला गया. हालांकि उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में ही 88.33 की दूरी नाप ली थी, वहीं उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था. लेकिन भारत के लिए यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो में जो उम्मीद की जा रही थी, नीरज चोपड़ा की हालांकि कमी जरूर रही, अगर होते शायद गोल्ड तक जाते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने दो पदक जीतकर डबल खुशी जरूर दी है विदुषी.
2: Absolutely, the action is unfolding right now. The medals are coming in, records are being broken, and India is making its presence felt across athletics and boxing as well. To take a quick look at some absolutely amazing headlines we have had in the last hour and a half, Parul Chaudhary does it again, bronze for India in the women's

0: புதுச்சேரி மக்களின் கவனத்திற்கு, இனி மின் கட்டணத்தை பற்றிய கவலை வேண்டாம். பிரதம மந்திரி சூரிய இலவச மின்சார திட்டத்தின் மூலம் உங்கள் வீட்டில் சோலார் மின் நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு சார்பில் ரூபாய் 78,000 திட்ட மானியமும், புதுச்சேரி அரசின் கூடுதல் மானியமாக 30,000 ரூபாய் என 3 கிலோவாட்டிற்கு ரூபாய் 1,08,000 வரை மானியம் கிடைக்கிறது.
1: மானியம் பெற பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்க வேண்டும்.
0: கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.pmsuryagar.gov.in.
2: நேகலை, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
3: It's time for the Asian Games 2026 update.
4: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
5: Welcome back to the Asian Games update. I'm Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi. The day at the games today has just ended and it's time to see how the day has been for India today. But before that, in our last update we told you that the women's 4x100 meters relay final had got underway. Well, there is no podium finish for India in this one. The Indian quartet of Tamanna, Sneha, Sudeshna and Abhinaya have finished fourth, clocking a season's best of 43.57 seconds, but India missed the podium by just 0.05 seconds. A difficult baton exchange cost the Indian team valuable ground. But that's not all that we have from this absolutely fascinating day of competition. It has been a day of twists, turns, dramatic finishes, and most importantly, 4 more silver medals for India. And if we talk about the silver medal story of the day, it was Aisha Singh who set the momentum rolling. Aisha won silver in the women's 25 meter pistol, producing a brilliant score of 38 in an incredibly dramatic final. And this was a final that demanded composure. 5 shoot-offs for Aisha. 5 moments where the pressure kept rising, but she kept her calm and fought her way to that silver medal. That first silver medal set the tone for what became a remarkable medal run for India today. And then came another one from athletics, Yashveer Singh, the throw that won silver. Yashveer saved his best for the last, producing a personal best of 85.72 meters on his final attempt. Every throw went further than the last. Then came another outstanding performance from Gulveer Singh after his silver in 10,000 meters. Gulveer has now added another silver in the men's 1500 meters, this time with a new personal best.
6: जी बिल्कुल, रजत पदक के बाद कांस्य पदक की बात कर लेते हैं। आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात एथलेटिक्स की, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। पारुल का इन एशियन गेम्स में यह दूसरा पदक है। पारुल ने इससे पहले 5000 मीटर में 15:14.61 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित ने 84.35 मीटर का शानदार थ्रो किया। महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में विद्या रामराज ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 54.75 का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। और आखिर में कुराश से अच्छी खबर आई। महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बल्हारा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। बात 3 मुकाबलों की नहीं बल्कि 3 ऐसे मैच थे जिसने मेडल की न सिर्फ आस बढ़ाई है बल्कि मेडल का रंग भी बदलने की उम्मीद जताई है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया।

0: अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के किए हैं.
1: And as we wrap up, what today has been a remarkable day for India, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits. There's a pretty good lineup across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. If we look at archery, we have the men's and women's individual round of 32 and 16. We'll be looking at Neeraj Chauhan, Dheeraj, and we'll be looking at Kirti as well. And of course, when it comes to athletics, well, it's another busy day. We have the women's high jump final where expectations will be high from Pooja. We have the women's hammer throw final scheduled with Anushka and Tanya carrying our hopes. Then comes the men's 800 meter final with Mohammad Afzal in action, and we'll also be looking forward to the men's 5000 meter final where all eyes will once again be on Gulveer Singh and Avinash Sable. In boxing as well, some big semi-final bouts coming up for us. The women's 65 kilo semi-final, India's Parveen will take on China's opponent. Men's 80 kilo semi-final, Ankush will face Uzbekistan's opponent, while in men's plus 90 kilogram semi-final, India's Narendra will be up against Kazakhstan's opponent as well.
0: जी बिल्कुल, अब मेरे टैली पे चलते हैं, बताते हैं चाइना ने 132 गोल्ड, 53 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज समेत 230 पदक जीते हैं. 230 पद के साथ सबसे ऊपर है जापान की बात करें, 41 गोल्ड, 68 सिल्वर, 63 इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, 172 पदक है. दूसरे पायदान पर वही कोरिया की बात करें, 21 गोल्ड मेडल है, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक है. भारत की बात कर लेते, 4 गोल्ड, 20 सिल्वर, 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक जीते. इन 45 पदकों में 19 पदक केवल एथलेटिक्स से आए जबकि 12 पदक शूटिंग से आए हैं. अब कल का दिन जब नया शुरू होगा वहां देखना होगा भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है. लेकिन आज की अंतिम अपडेट में यह बताते हुए, आज रात 10 बजे विशेष हमारी रिपोर्ट जरूर सुनिएगा जो एशियन गेम्स पर आधारित है. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को कहते हुए अनुमति दीजिए, कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: நேற்று ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். நேரம் 7:33 மனம் விரும்புது நிகழ்ச்சியில வரக்கூடிய அடுத்த நேயர் வணக்கம், யார் இங்கிருந்து?
4: முன்னிரவு
3: வணக்கம் சார், யார் இங்கிருந்து?
4: எம் அபுசாலி, தாண்டவமூர்த்தி குப்பம்.
3: ஓகே, நலமா இருக்கீங்களா சார்?
4: நலமா இருக்கு சார், தாங்க அனைவரும் நலமா இருக்கீங்களா?
3: எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கும். என்ன படத்துல பாடல் வேணும் சார்?
4: படம் புது புது அர்த்தங்கள்.
3: ஓகே,
4: பாடல் கேளடி கண்மணி.
3: ஓகே, இப்ப நீங்க கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு. இந்த பாட்டு
4: நன்றிங்க சார்.
3: நன்றி சார்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक। गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना। कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गईं। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी, ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
2: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट-ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट-ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट-ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा

0: का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
1: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash Arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम दिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter final encounter. It was an extremely close contest with

0: Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
2: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
2: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अभी यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
2: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।

0: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
1: फ्रॉम वुमेन सेपक टकराव इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
0: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
2: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार चीन के खिलाड़ी के 8

0: और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
1: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
0: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals. And India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलवीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: நேயர்களே, ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த அன்றாட நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். நேரம் 10:20. தேன் சிந்து தேவாணம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பாடல் கேட்கலாம். நிழல்கள் திரைப்படத்திலிருந்து.